0: but the deadline passed and he's still trying. He set himself an end-of-year deadline to try again or get another job, whatever it is.
1: जब मैंने तैयारी करा था तो मैंने डेडलाइन अपने लिए एक साल के सेट करा था तो वो क्रॉस तो